उमानना रिखरना सिंतुरा नाना ऐसा हाँ इम्मा चा विधायक ने चाहिए के चाहे का रंतियारा मया वाई के चाहे खोलियास पैसा तापा एक साइक बिस्तारी चे सिंतुरो ना टूरिस्ट लगेलर माय चा कंचा पिंकाशियां को काली बोलीवार 207 चे चाहे मां बिस्तारी चे आई विएने पेड्रितो मोंटाइनेस।